0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज Amyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद करामतुल्लाह खान। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं पंडित निखिल बंदोपाध्याय का राग भैरव में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित स्वपन चौधरी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन राग आहिर भैरव बाय उस्ताद अली अकबर खान। Accompanying on the tabla, Ustad Keramatullah Khan. This is Ragam, 24/7 anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sitar recital in Rag Bhairav. Our artist, Pandit Nikhil Banerjee. Accompanying on the tabla, Swapan Chaudhary.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव में पंडित निखिल बंदोपाध्याय का सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित स्वपन चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: He was listening to a sitar recital in Rag Bhairab by Pandit Nikhil Banerjee, accompanying on the tabla Swapan Chaudhary. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुंवर राजेंद्र सिंह का स्वरलीन वादन. प्रस्तुत है राग चंद्रकंस. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित मदन मिश्रा. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट स्वरलीन वादन बाय कुंवर राजेंद्र सिंह. ही प्रेजेंट्स राग चंद्रकंस, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा.

ये था राग चंद्रकोस। आप सुन रहे थे कुंवर राजेंद्र सिंह से स्वरलीन वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। प्रस्तुत है राग तुलसी कोस। इसमें आलाप जोड़ झाला तथा धमार ताल में निबद्ध गत प्रस्तुत है। दैट वॉज राग चंद्रकोस। You were listening to Swaralin recital by Kuwar Rajendra Singh. He was accompanied on tabla by Pandit Madan Mishra. We present Surbahar recital by Pandit Kartik Kumar. He presents Raag Tulsi Kaus, in which he plays Alap Jodh Jhala and Gat in Dhamar Taal.

ये था राग तुलसी कंस। आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग तुलसी कंस। यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwal. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilbit and rutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सर पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनायक वोरा का तार शहनाई वादन. उन्होंने तार शहनाई पर बजाया ये है राग मारुविहाग. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित सुरेश तळवलकर. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा. ही प्रेजेंट्स राग मारुविहाग. विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग मारुबिहाग। अपना तार शहनाई वादन जारी रखते हुए विनायक वोरा अब प्रस्तुत करते हैं राग रागेश्री। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं दिलशाद अहमद। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग मारुबिहाग। कंटिन्यूइंग हिज तार शहनाई रिसाइटल, विनायक वोरा नाउ प्रेजेंट्स राग रागेश्री। विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय दिलशाद अहमद।

ये था राग रागेश्री। आप सुन रहे थे विनायक वोरा का तार शहनाई वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे दिलशाद अहमद। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग रागेश्री। यू आर लिसनिंग टू तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दिलशाद अहमद। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. कलाकार हैं अवंती भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी. अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का आरंभ खमास ठुमरी से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं ये खमास ठुमरी. कलाकार अवंती भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट Hindustani vocal recitals followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a Khamaj Thumri followed by a Bhairabi Dadra. Our artist this evening is Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khamaj Thumri. Our artist Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थीं अवंती भट्टाचार्य। अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही हैं भैरवी दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये भैरवी दादरा, कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू खमाज ठुमरी। Our artist was Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhairabi Dadra. Our artist is Avanti Bhattacharya. Accompanying her is Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Bhairabi Dadra, our artist, Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप भैरवी दादरा सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विष्णु ताल और धमार ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं पंडित सोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। पंडित सोहनलाल मिश्र अपने तबला वादन का आरंभ विष्णु ताल से कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं विष्णु ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहनलाल मिश्र।
1: यू वर लिसनिंग टू भैरवी दादरा। Our artist was Avanti Bhattacharya. Accompanying her was Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Continuing the concert, we now present an instrumental recital. Listen to a tabla recital in Bishnu Tal. This will be followed by a dhamar. Our artist is Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to the tabla in Bishnu Tal. Our artist is Pandit Sohanlal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप विष्णु ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहन लाल मिश्र। पंडित सोहन लाल मिश्र अपने तबला वादन का समापन धमार ताल से कर रहे हैं। तो ये प्रस्तुत है धमार ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहन लाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू द तबला इन विष्णु ताल। Our artist was Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Adhamar Tal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप धमार ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहन लाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Dhamar Taal. Our artist was Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist was Sanatan Goswami on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन. सबसे पहले आप राग जौनपुरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी। आइए अब सुने हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग किरवानी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग किरवानी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे सितार पर बजाया राग गारा में एक धुन से कि दादरा में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग गारा में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे शीतल प्रसाद मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं हीरा देवी मिश्र. इनसे आप सुनेंगे मिश्र खमाज. बोल हैं जाओ मोरी बैया न मरोरो गिरधारी. संगत कलाकार हैं तबले पर कुमार लाल मिश्र और सारंगी पर कमल मिश्र. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय हीरा देवी मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द प्रेजेंटेशन मिश्र खमाज. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कुमार लाल मिश्र ऑन द तबला एंड कमल मिश्र ऑन द सारंगी. This was recorded in the year 1980.

अगली प्रस्तुति है ठुमरी भैरवी। बोल हैं छाए घटा घनघोर, पिया नहीं आए मोर। नाउ लिसन टू अ भैरवी ठुमरी।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं हीरा देवी मिश्र। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय हीरा देवी मिश्र। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे भैरवी दादरा। बोल हैं चलो रे परदेसिया नैना लड़ाएं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थीं हीरा देवी मिश्र। संगत कलाकार थे तबले पर कुमार लाल मिश्र और सारंगी पर कमल मिश्र। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय हीरा देवी मिश्र। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय कुमार लाल मिश्र ऑन द तबला एंड कमल मिश्र ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाल मनाए, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगीकी है नवाब अली खाने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पहले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल तालमेनिबद्ध है। बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहिया बिलावल सुन रही थी। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहिया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and the sarangi by

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. श्रोताओ, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य. आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं. कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य. तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. We present devotional songs. We begin the program with Meera Bhajan followed by a Kabir Bhajan. Our artist is Nandini Bhattacharya. Listen now to Meera and Kabir Bhajans. Our artist Nandini Bhattacharya.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nobunita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chandok.